0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल
3: फ्रेंड्स, माय नेम।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है, 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम अयूब सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मैम चुलिया गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैम आज गाना सुनना चाहते हैं, आज हमारे दोस्त का बर्थडे है मंजूर अली खान का, तो आज गाना सुनना चाहते हैं, आज मेरे यार का बर्थडे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: ओके मैम, थैंक्स।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: नमस्ते मैडम।
1: नाम क्या?
2: हेलो
1: सर नमस्ते।
2: नमस्ते मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
2: मंजूर अली खान।
1: कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? गंगा पुछे टीवी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मैम वो है नसीब मूवी का सॉन्ग, गोविंदा का, और सॉन्ग वो है
1: कौन सा?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।
6: हेलो।
5: हाँ सर, नमस्ते।
6: नमस्ते मैडम।
5: नाम क्या है आपका?
6: कहाँ लोग मस्जिद के पीछे से।
5: अभी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: एक समय हम तुम्हें क्या बताएं।
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
7: हम तुम्हें क्या बताएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैम नमस्ते।
2: नमस्ते, नाम क्या है आपका सर?
1: मैम मेरा नाम है मोनू।
2: कहाँ से बात कर रहे हो मोनू जी?
1: गंगापुर सिटी मदीना मस्जिद।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बहाने लाखों है जी।
2: हाँ जी,
1: उनका बर्थडे का।
2: अच्छा सर,
1: उनके लिए कोई बढ़िया सा सॉन्ग लगा दो, बर्थडे सॉन्ग। एक दिन पहले उनको बताया था, इनसे कम हुई तक से।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी बर्थडे सर। कौन सा सॉन्ग?
1: मैम वो गाना ना, मिस्ट्री वाला केक मंगाया।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: अजय नमस्कार
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: हाँ साबिर, गंगापुर से बोल रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं जम्मू से केशव शर्मा जी।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अरे आज मुझे सुना दिए धर्मात्मा सिंह का गाना, जो मम्मी दिल कपूर और लता मंगेशकर जी गाते हैं, जुबा जुबा के चर्चे तेरे, मेरी गलियों से लोगों की यादी बढ़ गई, वो वाला गाना है ना?
1: ओके सर, हेलो। ओके सर, सुना फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैडम, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: मुझे कौन
0: कहाँ से बात कर रहे हो मैम? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: उनके अंदाजे करो।
0: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार सर आपका।
0: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, नाम क्या है?
0: जी तालीम खान नाम है लोगों का।

0: गंगा प्रसिद्ध
1: खाना। नहीं मैडम, एक कब्बाली टाइप की अगर पूरा चलाओ तो सुना दो।
2: सर कब्बाली बहुत लंबी रहती है, 20 मिनट की कब्बाली नहीं चलती।
1: नहीं, 20 की है और लगभग 8 मिनट की है मैम।
2: हाँ जी मैं चला दूंगी, बताओ।
1: आखिरी सजदा
2: कौन सी है सर?
1: आखिरी सजदा।
2: आखिरी
1: सजदा
2: ओके सर, सुना रहे हैं आखिरी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

तो वक्त हो चुका है 10:46 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सबाई माधेपुर से। उन्होंने एक गाना एक फ्रेंड यानी एक लिसनर के लिए डेडिकेट किया है। आज उनका बर्थडे है मंजूर अली खान। तो मेरी आरजे पलक शर्मा की भी तरफ से टीएस साइंस पूरे टीम की तरफ से मंजूर अली खान जी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: जी योगेश जांगड़े, बेनता छत्तीसगढ़ से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
3: फिल्म दबंग से कोई भी गीत सुनवा देंगे।
2: सुना रहे हैं, करिएगा ना
3: जी।

0: चौधरी भाभी जी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझे नौलखा मंगा दे।
1: वो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?
0: धन्यवाद।

0: मेरे मुंह 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है अमराज और गीत के बोल है नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश कर लेना।

0: मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम सोहन कैसी है?
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी मैडम, आज तुम मोहम्मद रफी का गाना सुना दो, बढ़िया सा।
1: मोहम्मद रफी का कौन सा?

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सुनहरी सपेरा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
1: भवनवास से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नजर आके तीर चला दी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।

0: सागर।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: एक साक्षी लगा ली। हाँ सर,
2: नाम
0: हम भी अगर बच्चे होते।
1: ओके सर, सुना आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अभिषेक।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? नसिया कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: लेला रोम रोम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज जश्न

0: का? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गांव के तरीका से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: झूला झूलू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: देवेंद्र।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल्ली वाली छोरी।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लक्ष्य सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: 80 लाख।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पाँव छू लेने दो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो दीदी, राधे राधे।
1: दीदी राधे राधे, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम समता जादौन है, बाड़कला से बोल रही हूँ दीदी।
1: दीदी कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझको गाना सुनना है बीवी हो तो ऐसी का, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी।
1: ओके दीदी, सुना रही आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू दीदी, सुना देना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते अंक दीदी।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोना मरे।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज मूवी का नाम है ये दिल आशिकाना।
1: गाने के बोल सर।
0: कुमार सानू की आवाज में सुना है इसमें कोई भी।
1: वो कैसा सुना रहे हैं? आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू मैडम।
1: यू वेलकम। हेलो।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पंकज सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अमित सैनी के।
2: रामा रे पारे।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: हाई कोर्ट की वकील मेरी फैन हो गई।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी सर।

0: मगर तुम कर।
1: हेलो हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम पवन गुर्जर है मैडम।
1: कहाँ से बात करो?
0: हम नीचे एरिया से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वो एवरग्रीन चलाते ना।
1: कौन सा सर?
0: एवरग्रीन।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी मॉम, क्या है आपका?
1: कोमल,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कलम सॉन्ग।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मोहम्मद यासीन।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: पाल से। दिल रोड़ो चुरायो राजस्थानी गाना है मैम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर गाना के जरिए इसमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अरुण।
0: कहाँ से बात करो सर?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सब कुछ कह रही है सावरिया। अभी सुनाना इस गाने को।
0: सर टाइम लगेगा।

0: हेलो
1: हेलो है आपका।
0: हेलो
1: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: जी पलक बहना जी, प्रणाम नमस्कार।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: राजू यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से गीत सुनना चाहे थे, मूवी का नाम है साजन, देखा है पहली बार साजन किया।
1: आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: लगी हुई सी कहानी सुनाता, जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी, बरसात ने ऐसी धूम छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों बरसी थी।
1: अरे सुन सुन।
2: यस मां।
1: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: मां मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
1: अरे सुन सुन।
2: बाय बाय।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस एकेडमी वेयर
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों बाग तो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो DS पर।

0: पानी से वंचित प्रदेश। लेकिन मैं नहीं मानता यार, हमारे पास बहुत पानी है और खासकर विंटर्स के दौरान भैया हमसे ज्यादा पानी, खासकर गंगापुर सिटी से ज्यादा पानी कोई नहीं बचाता, क्योंकि हम नहाते ही नहीं पर गाने बहुत सुनते हैं, क्योंकि हम ट्यून इन करके रखते हैं पूरे दिन 89.6 रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: गए 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.

0: 106 पे
1: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सास सुने थे कार्यक्रम नहीं तरांडे, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बोली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जानी थी। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी,
0: हाँ। और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे, हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएसएफ।

0: नमस्ते सरजी, चौधरी अर्ज कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कौन सा सुने बताओ।
1: आप बताओ सर, मैं क्या बताऊँ, आप बताओगे जोन से ही चलेगा।
0: हो गया सुधार?
1: हाँ जी सर, हो तो गया 10 मिनट।
0: मैं नहीं भेजता, शॉर्ट ही भेजता हूँ 5।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: और ईमानदार फिल्म का है
1: गाने के बोल।
0: और इस दिल में क्या रखा है?
1: ओ इस दिल, और इस दिल में क्या रखा है?
0: जी जी
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: जी वेलकम।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, और सुनाओ, बढ़िया हो?
1: हाँ सर, ठीक है। नाम क्या है आपका?
0: नाम तो बाबू खान है, सीधा सा नाम।
1: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिंह जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रात भर जाग जाग कर।
1: ओके सर, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: आदरणीय दीदी सादर नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और रेडियो सुनना मेरा शौक है। आपका डीएस रेडियो सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है और अच्छे अच्छे गीत आप प्रसारित करते हो।
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप हमारी रेडियो की ना वो करते हो।
0: मैं आपका रेगुलर श्रोता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे गीत जो आप बजाते हैं राजस्थानी में हो या हिंदी में बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कूल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद, मंगलमय।

0: मैं राम गुजर बोल रहा हूँ राम दरिया से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: सर गाने के बोल है किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू धन्यवाद आपका।

0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: मान जाइए बात मेरे दिल की जान जाइए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: यू वेलकम सर।

0: सौरभ कुमार मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सुनना पूछी थी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मीना की थोड़ी
1: नहीं चलते ये गाने।
0: तो मैम वो चला दो, चिंता ना कर पगली डोला ऐसे चलेगा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: नाम से आया था
0: चंचल,
1: नाम से बात कर रहे हो?
0: गंगा पर
1: सुनना चाहोगी?
0: आई लव यू आर
1: गंगा।

0: क्या है आपका
1: नाम? रोहित मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मंगलापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: डांडा नौले वाला का चला दो कोई सा भी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोनिका।
0: मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: परांदे विच दिल आ गया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। मोनिका

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बोले चूड़ियाँ बोले कंगना।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:09 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: अपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
4: जिम्बाब्वे में नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे में रूल्स है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए किसी भी आसपास वाले गाड़ी के ड्राइवर या सड़क पे भी खड़े इंसान को गंदे इशारे करोगे हाथों से, तो आपको जेल हो सकता है। शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो और इस वक्त ट्यून इन कर रखा आपने रेडियो DS 89.6, क्योंकि कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने आपके लिए।

0: सुजनापुर स्थिति की धरकर
1: ट्यून इन कर रखा है अपने 89.6 रेडियो डीएस और कहीं जूम में नहीं हो आप। लेकिन लेकिन लेकिन आज का शो यही तक था। लेकिन जाने से पहले एक बढ़िया फैक्ट मेरे हाथ लगा है। क्रो यानी कि जो कौवे होते हैं वो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं। और एक और खास बात यह है कि अगर उनके मन में कोई ग्रज है यानी हमारे खिलाफ शिकायत है कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी याद रखते हैं। यानी कल ऑफिस जाओगे और बॉस को पुराने ग्रजेस याद रहे तो वो आपका बॉस नहीं, वो है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दिन में पहली बार मुलाकात। देखो, किसी शख्स को अगर हम बचपन से भी जानते हैं और उसे हम दिन में पहली बार मिल रहे हैं, तो या तो हम उसके पैर छूते हैं, या फिर उनसे हाथ मिलाते हैं, या फिर उनसे गले मिलते हैं। लेकिन आपसे मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भैया फिजिकली पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपसे दिल मिलाना चाहता हूँ। और दिल कैसे मिलेंगे? सुर के साथ, ताल के साथ, लय के साथ और शानदार गानों के साथ। तभी आपके लिए मैं प्ले करने वाला हूँ बैक टू बैक चार गाने ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो कि शब्दों का जो वजन होता है वो हमारे ना बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पर भी लिखा ही होता है वेलकम वेलकम वेलकम, तभी मेरा वेलकम करो भैया, क्योंकि आज का दिन आपका सुनहरा तभी जाएगा जब आप मेरे साथ अभी अगले एक घंटे तक जुड़े रहोगे और अमेजिंग गाने सुनोगे, अमेजिंग बातें सुनोगे। और गंगापुर सिटी के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा, फिलहाल आपके लिए कुछ अमेजिंग बैक टू बैक गाने प्ले करने वाला हूँ। कहीं मत जाना, सुनते रहो 89.6 रेडियो बीएस
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: नॉक नॉक।
1: हेलो हेलो। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, आप ध्यान से गाने सुन रहे थे तो मेरे को लगा कि शायद आप ध्यान से मेरी दो लाइंस भी सुन ही लोगे। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस और पेश करता हूं आपके खिदमत में नजरों से जुदा हुआ ना, नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, ना नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, यू अलविदा हुआ भी तो क्या अलविदा हुआ, हुआ नहीं हुआ कोई सेंस बन रहा है इस बात का, नहीं बन रहा, बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि अलविदा कह के मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कहाँ, रेडियो डी ए सी 89.6 पे,
2: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
0: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: रेडियो डीएस के संग इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।